0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स
4: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरुको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
5: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
6: संपर्क नंबर 5320411 9802076888।
4: जेजे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
7: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नु हुनेछ।

एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल प्यालेस केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योति

यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz।

बीस अन्ठानब्बे एकचालिस अट्ठाइस अन्ठानब्बे बीस विज्ञापन दिई आफ्नो व्यापार व्यवसायको प्रवर्धनका साथै आध्यात्मिक यात्रालाई टेवा दिउँ।

भक्तों, प्रेम से बोलो जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान की। भक्तों, आज मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह में पड़ती है। योगिनी एकादशी की महिमा सबसे उत्तम, सबसे पावन है।

0: भक्तों बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की
1: जय।
0: भक्तों योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना परम श्रेष्ठ कर माना जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।

भक्तों, कुबेर जी शिव जी के परम भक्त थे। शिव जी की पूजा आराधना में डूबे रहते थे। भजन वंदन संध्या प्रातः आरती करते, समस्त परिवार के साथ उनका एक खास माली भी था, जो प्रतिदिन शिव पूजन के लिए मानसरोवर से सुंदर सुंदर पुष्प लाया करता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि

वो माली अपनी नौ यौवन पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ा में इस तरह से डूब जाता है कि उस माली को याद ही नहीं रहता है कि उसको मानसरोवर से कुबेर जी के लिए पुष्प भी लाना है। माली का प्रतिदिन का काम था प्रातः काल मानसरोवर से शिव जी की पूजा के लिए पुष्प लाकर कुबेर जी को देना होता था।

0: एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की
1: जय।
0: माली को अपनी भूल पर पछतावा होता है, वो स्नान करके भागा भागा मानसरोवर पहुंचता है। आनन फानन में पुष्प तोड़ के दरबार पहुंचता है, जहां कुबेर जी क्रोध में भरे बैठे थे। आइए आगे क्या होता है कथा के

0: भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की
1: जय।
0: कुबेर जी माली को कोढ़ी हो जाने का श्राप देके अपने राज्य से निकाल देते हैं। वो कष्ट पीड़ा सहते सहते मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचता है। अपनी पीड़ा के कष्ट निवारण के लिए उनसे विनती करता है। मार्कंडेय ऋषि उसको योगिनी एकादशी का व्रत रखने का नियम समझाते हैं। माली अषाढ़ की योगिनी एकादशी का विधिवत पालन करता है और श्राप मुक्त होकर कंचन काया प्राप्त करता है। जय श्री हरि।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित पसिना सोच्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट लेडिज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्रोमर
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।
4: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
5: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
4: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
3: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। संपर्क नंबर 5320411 9802076888।
4: जेजे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
6: One oh four eight.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित पसिना सोच्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू कम्फर्टेबल यू।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित पसिना सोच्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर
1: जेन्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट लेडिज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One 4-8.

0: சாவேல் சுச்சேபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने.

0: अभिन अपने सुनतानी रउवा लोगिन के अपन रेडियो स्टेशन एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज
1: अभिन अपने सुनत पानी रउवा लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी।

0: अभिन अपने सुनतानी रउवा लोगिन के आपन रेडियो स्टेशन एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज
1: अभिन अपने सुनत पानी रउवा लोगन के आपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झारी

0: शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: अभिन अपने सुनतानी रुवा लोगिन के अपन रेडियो स्टेशन FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज।
3: अभिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी

0: ओल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: संतोष पागल नहीं, उसे का मतलब रे साला तू। हम संतोष पागल नहीं।
1: अरे बेटा, मैं तेरा बाप हूँ।

0: जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्स मा छ सुन, चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरुको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन, चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्स के किन्नुस।
1: जेजे ज्वेलर्स बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी। संपर्क नंबर 5320411 98020 76888।
0: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

0: Kids Weekend Classic Radio Show.
1: क्लासिक्स रेडियो शो शुरू हो चुका है। मैं हूँ रुचि आपके साथ और हर हफ्ते आपके लिए कुछ चुनिंदा गाने लेकर आती हूँ और साथ ही उनसे जुड़े कलाकारों के किस्से और कहानियां भी आपको सुनाती हूँ। आज की मेरी प्लेलिस्ट है हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब और पहली फीमेल सुपरस्टार वैजयंती माला जी के नाम। दिलीप जी और वैजयंती माला जी ने कई फिल्मों में साथ में काम किया है जो कि काफी सक्सेसफुल रही। उनकी जोड़ी बड़ी पॉपुलर थी। ऑडियंस को उनकी जोड़ी इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि दिलीप साहब और वैजयंती माला जी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी नेचुरल और काफी कंफर्टेबल थी। और जानते हैं, अपनी हर फिल्म के साथ वैजयंती माला जी दिलीप साहब से कुछ ना कुछ सीखती थी क्योंकि दिलीप साहब काफी डेडिकेटेड एक्टर थे। वैसे दोनों की पहली फिल्म थी देवदास, जिसमें एक सीन में तो दिलीप साहब ने अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए काफी वक्त लगा दिया था, लेकिन वैजयंती माला जी नाराज नहीं हुई इस डीले को लेकर के, बल्कि बैठ करके उन्हें ऑब्जर्व करती रही जिससे कि वो भी सीख पाए कि किस डेडिकेशन के साथ एक एक्टर अपने कैरेक्टर को प्ले कर सकता है। वैसे इस फिल्म में उनकी कास्टिंग से हर कोई खुश नहीं था। इनफैक्ट फिल्म की वो पहली चॉइस भी नहीं थी। फिर कैसे उन्हें ये फिल्म मिली बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं वो गाना जो एक पंजाबी फोक सॉन्ग पर बेस्ड था जिसे गाया था आशा भोसले जी और रफी साहब ने। वैसे इस गाने से आशा जी को खुद की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी भी मिली थी एज अ प्लेबैक सिंगर। मैं बात कर रही हूं नया दौर फिल्म के गाने उड़े जब जब जुल्फें तेरी की। सुनिए जरा।

क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। जब फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय जी ने अपनी फिल्म देवदास में वैजंती माला जी को साइन किया, तब इंडस्ट्री के काफी लोग अपसेट हो गए थे। इनफैक्ट फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर नबेंदु घोष जी ने तो वैजंती माला जी को अप्रूव ही नहीं किया था, क्योंकि उनके हिसाब से चंद्रमुखी के रोल के लिए वो काफी यंग थी। लेकिन फिल्म के मेकर्स के पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि वैजंती माला जी से पहले उन्होंने नरगिस जी, सुरैया जी, मीना कुमारी जी सभी को ऑफर किया था ये रोल, लेकिन सबने मना कर दिया था ये कह करके कि उन्हें पारो का रोल करना था। सब्सिक्वेंटली द फिल्म यूनिट सफर्ड अ फाइनेंशियल क्राइसिस, और इस पॉइंट पर वैजंती माला जी को देवदास फिल्म ऑफर की गई, और उन्होंने बिमल दास से बस एक ही चीज कही कि देखिए मैं तो तैयार हूं, अगर आपको लगता है कि मैं ये किरदार निभा सकती हूं। बस फिर क्या था, इस पिक्चर से जो एसोसिएशन दिलीप साहब का और वैजंती माला जी का चालू हुआ, तो वो बाद में जाकर एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गया। लेकिन इस दोस्ती में भी काफी उतार चढ़ाव आए, जिसके बारे में आगे शो पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए सुनते हैं उनका वो गाना जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर सलिल चौधरी जी ने म्यूजिक पहले कंपोज कर लिया था और लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी ने लिरिक्स बाद में लिखे थे। वैसे इस गाने में हंगेरियन फोक म्यूजिक भी यूज किया गया था। मैं बात कर रही हूं मधुमती फिल्म से लता जी की आवाज में दिल तड़प तड़प के कह रहा है इस गाने के बारे में। सुनिए ये गाना मेरे यानी रुचि के साथ।

क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। जानते हैं, एक ऐसा वक्त था जब राज कपूर साहब और वैजंती माला जी की जोड़ी को काफी इम्पोर्टेंस मिल रही थी और दिलीप साहब और वैजंती माला जी की जोड़ी टूटने लगी थी। ये उस दौर की बात है जब वैजंती माला जी राज कपूर साहब की फिल्म संगम और दिलीप साहब की लीडर में साइमल्टेनियसली काम कर रही थी और इसी कारण बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज भी बाहर आ रहे थे। जब वैजंती माला जी की लीडर फिल्म कंप्लीट हुई और उसके बाद राम और श्याम साइन की उन्होंने, तब दिलीप साहब और वैजंती माला जी में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग आने लगी। इनफैक्ट इस फिल्म को वैजंती जी ने 8 दिन शूट किया और उसके बाद मेकर्स ने उन्हें वहीदा जी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि प्रोडक्शन असिस्टेंट ने उन्हें कहा था कि वो तभी के तभी उन्हें अपनी डेट्स बताएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वैजंती जी ने उन्हें कहा कि जैसे ही वो बॉम्बे पहुंचेंगी अपने मैनेजर से पता लगाकर उन्हें डेट्स दे देंगी। लेकिन असिस्टेंट अलग ढीठ, उन्हें तभी के तभी पेपर्स पर साइन चाहिए था। वैजंती माला जी ने उन्हें इग्नोर किया और बगैर साइन किए ही वो फ्लाइट में बैठ गई। अब जब तक वो मुंबई पहुंची उन्हें पता चला कि उन्हें वहीदा जी ने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है। ये बात वैजंती जी को बहुत बुरी लगी थी और उससे भी ज्यादा उन्हें ये बात बुरी लगी थी कि दिलीप साहब ने फिल्म के बाकी एक्टर्स को ये कहा था कि वैजंती जी ने ऑन सेट्स काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट की और इसलिए उन्हें फिल्म से निकाल दिया। फिर क्या था, इसी किस्से के बाद उनकी फ्रेंडशिप में ऐसी कड़वाहट, ऐसी दरार आ गई कि दोनों ने पार्टीज में भी एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन एक ऐसी शख्स थी जिन्होंने इन दोनों की फिर से दोस्ती करवाई, जो दिलीप साहब की लाइफ में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है ये बताएंगे इनके बारे में आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल सुनते हैं मधुमति फिल्म से गाना, जिसके म्यूजिक कॉम्पोजिशन में SD बर्मन साहब ने सलिल दा की मदद की थी। जैसे कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, किस सिचुएशन के लिए, कौन सी ट्यून या कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स, इन सभी में सजेशंस दिए थे। वैसे फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय जी ने सलिल दा के सारे ट्रैक्स अनफिनिश्ड स्टेज में ही सचिन दा को सुनाए ताकि कुछ चेंजेस लाना हो तो सलिल दा सही टाइम पर कर सके, लेकिन सचिन दा ने सलिल जी के कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं बनाए थे, सब की सब वैसे ही यूज करवाया था। वो इतने खुश थे, बस थोड़े बहुत सजेशंस इधर उधर दिए थे। तो चलिए, आपको बातें तो बता ही दी है, अब सुना भी देते हैं मधुमति फिल्म से अगला गाना।

0: Radio Show.
1: क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप. वेलकम बैक. मैं हूं रुचि आपके साथ. वैसे वैजंती माला जी और दिलीप साहब के बारे में हम बात कर रहे थे. मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि कैसे इन दोनों की दोस्ती एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण टूट गई थी. वैजंती माला जी और दिलीप साहब ने फिर बात करना शुरू किया तो वो सायरा जी के कहने पर किया. वैजंती माला जी जब भी दिलीप साहब की बीवी सायरा बानो जी से मिलती थी तो वो उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करती थी. एक दिन एक पार्टी में उन्होंने वैजंती माला जी से कहा कि ये क्या है, तुम दोनों की टीम कितनी अच्छी थी और कितनी अच्छी फिल्में बना रहे थे तुम साथ में, तो फिर बात क्यों नहीं करते, मेरी माँ को भी आप बहुत पसंद हैं, तो जरा अपनी दोस्ती फिर से कर लीजिए. तभी सायरा जी उन्हें दिलीप साहब के पास लेकर के गई और तब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर्फ हेलो कहा. उसी पार्टी में उनके और भी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जिन्होंने उन्हें एडवाइस किया ये कहकर कि क्या बचपना है, तुम दोनों को अब बात कर ही लेनी चाहिए. लेकिन दोनों ही स्टार्स एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे. फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब सायरा जी ने वैजंती जी को कॉल किया और कहा कि सुनिए, मैं आपको याद कर रही थी, हमें साथ में डिनर करना चाहिए, तो जब आप मद्रास से बॉम्बे आएंगी तब आ जाइए. बस फिर क्या था, इस मुलाकात के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और आज तो वैजंती जी इस किस्से के बारे में बात भी नहीं करती हैं और सायरा जी को अपनी एंजल बुलाती हैं. चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले गाने की ओर. सुनते हैं दिलीप साहब और वैजंती माला जी की सुपर हिट फिल्म नया दौर से रफी साहब की आवाज में ये अगला गाना.

गाने मैं आपको सुना रही हूँ। आपको वैसे मैं वैजंती माला जी और दिलीप साहब के बीच हुई तनातनी के बारे में बता रही थी, लेकिन आपको पता है इन दोनों के बीच कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं हुई, बस जो भी थी वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम ही थी। क्योंकि दिलीप साहब ने राम और श्याम फिल्म में वैजंती जी के साथ हुई नाइंसाफी को रोका नहीं और इस बात का वैजंती जी को बुरा लग गया था। जब उन्हें बिना बात के फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया था तो वैजंती जी को लगा था कि दिलीप साहब को कुछ करना चाहिए था। लेकिन एक चीज दोनों के रिश्ते से हमने जो सीखी है वो है ये कि अगर दोस्ती पक्की हो तो सब कुछ भुला कर माफ करने में तकलीफ नहीं होती। वैसे वैजंती जी ने जितनी भी फिल्में दिलीप साहब के साथ की हैं, उन सब में से उनकी पर्सनल फेवरेट है गंगा जमुना, क्योंकि वो एक साउथ इंडियन है और भोजपुरी लैंग्वेज में डायलॉग्स बोलना उनके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट था। और तब दिलीप साहब ने वैजंती माला जी को फिल्म में अवधि लैंग्वेज के डायलॉग्स बोलने में मदद की थी। इनफैक्ट वैजंती माला जी को आज भी विश्वास नहीं होता है कि उन्होंने इस फिल्म में अपने डायलॉग्स इतनी अच्छी तरीके से बोले थे। चलिए डायलॉग्स तो नहीं लेकिन गाना जरूर सुनाते हैं आपको। इसी फिल्म से अगला गाना सुनिए मेरे यानी की रुचि के साथ।

0: फंस गई,
1: ओए फंस गई,
0: ओए धीरे धीरे भोले भोले फंस गई।
2: कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानी और आपके पसंदीदा

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

कुबेर क्या नारायण भी भंडार पूरा इसको दे दें तो भी इसका कमंडल नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें तो लोभ जो बैठा है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लोभ रूपी शत्रु का जो विनाश करे, सत्ता शत्रुघ्न तो वही है, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है।

दर्शन करके चले गए गुरु घर में पढ़ने गए राम जी। अरे क्या पढ़ना है जी, उनको तो सब याद है। विश्वामित्रा ध्वरे येन मारी चाद्या निसाचराः पश्यतो लक्ष्मणश्चैव हता नैरिति पुंगवा। विश्वामित्र जी महाराज पधारे राघवेंद्र को लेने, राम लक्ष्मण पितु आज्ञा सिरोधार्ज करके चले गए और मार्ग में प्रभु ने ताड़िका का कल्याण किया जो अविद्या का प्रतीक है। क्रोध युक्त तो अविद्या ताड़िका का नाम है। और मारीच चाद्या निशाचरा, मारीच सुबाहु में सुबाहु को बैकुंठ भेज दिया, मारीच को लंका फेंक दिया। लेकिन भगवान जब जा रहे थे सज्जनों जनकपुर की ओर जा रहे, ऐसा करुण दृश्य उपस्थित हुआ। भगवान की बड़ी लीला विचित्र है। रास्ते में राम जी ने एक आश्रम देखा। ध्यान से सुनना, चारों तरफ वृक्षावली अद्भुत है लेकिन वृक्ष भी मानो शांत हैं। हवा चलने पर भी ज्यादा हिलते नहीं। वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी भी गंभीर हैं, कलरव नहीं करते। उस आश्रम की विशालता को देखकर के विदित होता है यहां बहुत ऋषियों का आवास रहा होगा। जगह जगह यज्ञ भूमि वेदियां बनी हैं, खंडहर के रूप में सब है। उस भूमि में प्रवेश करते ही राघवेंद्र के मन में एक विचित्र प्रकार की अनुभूति हुई। भगवान राम ने देखा मार्ग में कोई शिला पड़ी है, पत्थर शिला, और उस शिला पर किसी नारी की आकृति बनी है। राम जी ने कहा, गुरु जी ये आश्रम कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है, आश्रम विचित्र सा लगता है, ये कौन सी जगह है और ये शिला पड़ी है गुरुदेव? किसी माता की आकृति से युक्त? भगवान राम ने जब पूछा तो ऋषि विश्वामित्र जी ने उनको बड़ी सुंदर बात बताई, बड़ी सुंदर भाव कही।

विश्वामित्र के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, प्रभु एक ऐसी ऋषि पत्नी जिसको समस्त ऋषि लोग बहुत आदर दृष्टि से देखते, उस विदुषी नारी से बड़ी भारी भूल हो गई। मुझे लगता है उसने नारी धर्म के विपरीत कुछ कर दिया। देवराज इंद्र के प्रति किंचित आकर्षण हुआ ऐसा लगता है। ऋषि गौतम ने दिव्य दृष्टि से सब देख लिया और उसको शिला पत्थर बनने का शाप दे दिया। तब से पत्थर के रूप में पड़ी है इस मार्ग में। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। इस दोहा में विश्वामित्र जी का आदेश नहीं है, प्रार्थना प्रतीत होती है। आपके चरणों की धूली को प्राप्त करेगी इसे मोक्ष मिलेगा। राम जी बोले, आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? किसी ऋषि पत्नी को मैं अपनी चरण धूली प्रदान करूं? नहीं नहीं, ये आप क्या कहते हैं गुरुदेव? हम रघुवंशी हैं और हमारे वंश की तो ये परंपरा रही है कि ब्राह्मण की कोई छोटी बालिका भी हमारे घर आ जाए तो हमारे घर के बुजुर्ग भी अपनी पगड़ी उसके चरणों में रखते हैं। ब्राह्मण की बालिका का भी आदर होता है मेरे खानदान में। इतने बड़े महान ऋषि की पत्नी और मैं उसको चरण धूली? नहीं नहीं गुरुदेव, ये क्या कहते हैं आप? हम रघुवंशी हैं। आपको मालूम है भगवान राम जिस वंश में पधारे, इनके पूर्वज महाराज रघु कितने बड़े तपस्वी और कितने बड़े उदार मना और कितने सहिष्णु परोपकारी। प्राचीन भारत में लोग जब यज्ञ करते थे तो जिस देवता की आहुति दी जाए वो देवता कभी कभी प्रकट होकर आहुति स्वीकार करता था, और यज्ञ के अंतिम दिन सब देवता प्रकट होकर कहते थे, मांगो क्या चाहिए। रघु महाराज ने यज्ञ किया तो यज्ञ में एक एक देवता सब प्रकट हो गए। अग्निदेव प्रकट हुए, इंद्र प्रकट हुए, चंद्र प्रकट हुए, सूर्य प्रकट हुए, सब देव प्रकट हो गए। लेकिन देवताओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई देव है तो उसका नाम है पवन। पवन से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। करोड़ों ब्रह्मांड आकाश में लुढ़कते रहते हैं पर एक ब्रह्मांड को दूसरे ब्रह्मांड से पवन टकराने नहीं देता, नहीं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड आपस में लड़कर के एक अग्नि के पिंड के रूप में समाप्त तो हो जाए। लेकिन अग्नि किसी को टकराने नहीं देता। ये पवन देवता बहुत शक्तिशाली है। पवन तनय बल पवन समाना, इसलिए हनुमंत परम तेजस्वी हैं क्योंकि पवन तनय है। पवन देवता वायु जब प्रकट हुए, महाराज रघु मैं वायु बहुत प्रसन्न हूं, सब देवताओं से आपने कुछ मांगा है, मुझसे भी कहो क्या चाहिए। महाराज रघु ने कहा, क्या मांगू पवन? बोले, आप जो मांगोगे सो देंगे। रघु ने कहा, आप तो सबसे शक्तिशाली हैं और मेरा राष्ट्र जो भारत है यह कृषि प्रधान देश है। मेरे राष्ट्र के कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां हमारी बहनें भी खेती में कार्य करती हैं, पत्नी भी अपने पति के साथ में खेत के कार्य में हाथ बटाती हैं। ऐसे भी कई इलाके इस राष्ट्र में हैं और अधिकांश हैं। बस आपसे एक ही निवेदन है महाराज पवन, मेरे राष्ट्र की कोई माता, कोई बहन, कोई बेटी अपने कृषि के कार्य को संपन्न करके अपने घर की ओर जब आवे और कदाचित वो मार्ग में थक जाए, किसी वृक्ष के नीचे विश्रांति के लिए बैठ जाए और बैठे बैठे कदाचित उसको नींद आ जाए और गहरी नींद में सो जाए, तो पवन देवता तुम इतनी मर्यादा से चलना, इतनी मर्यादा से बहना कि उस नारी का अंग वस्त्र से अंग से उठकर के कभी न जाए। उस नारी का जो अंग वस्त्र है वो मर्यादा में बना रहे, इतनी गति से ही तुम बहना, इतनी गति से चलना ताकि उसकी मर्यादा भंग न हो सके।
महात्मा पवन तो गदगद हो गए। जहां प्रत्येक नारी के आवरू के प्रति इतने सद्भाव इतने सद्विचार हो, उस वंश में जन्मे हैं परात्पर श्री राम, वो किसी ऋषि पत्नी को चरण स्पर्श कैसे दे सकते हैं। राम ने कहा संभव नहीं है और मैं ये नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी बोले, रघुवर ऐसे किसी महान आत्मा का चरण इसको लगे जिसने वेद के विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया, ऐसे महापुरुष की चरण धूल से ही इसको मोक्ष मिलेगा जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता। राम जी बोले तो फिर यह काम आप ही कर दो ना गुरु जी, अपने चरणों का स्पर्श आप ही प्रदान कर दो ना। विश्वामित्र बोले मैंने क्रोध को कहां जीता है रघुवर, आपके कुलगुरु आचार्य वशिष्ठ जी के प्रायः समस्त पुत्रों को मैंने अपनी तलवार से मार दिया, 99 पुत्रों का कत्ल किया था वशिष्ठ जी के महात्मा विश्वामित्र ने, तो मैंने क्रोध को कहां जीता है। और काम को जीतने का जहां तक प्रसिद्ध बात है, अब तो मैं संत हूं, मुझे हजारों वर्ष बीत गए विरक्त हुए, लेकिन तुम जानते हो जब मैं विरक्ति के चढ़ाव पर था और मैं समाधि में जब लीन था तो मेनका नाम की अप्सरा आई, मेरी समाधि को भंग करके चली गई, न मैंने काम ही जीता और न मैंने क्रोध ही जीता, ये कार्य तो केवल आप कर सकते हैं। भगवान राम बड़े संकोच में पड़ गए, अपने चरण को जरा सा मेरे प्रभु ने उठाया, पवन देवता ने सहयोग किया और राम के चरणों की धूल राम के चरण से हटाकर जरा सी शिला से छुबाई, सो उसमें से वो नारी प्रकट हो गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान पतित पावन भगवान की, परसद पद पावन शोक नशावन, प्रकट भई तप पुंज सही है, आनंदित हो गई, पतिलोक में पधार गई। सारी अयोध्या के लोग राम जी को बोलते हैं रघुपति, राम जी को अवधवासी बोलते हैं रघुपति। माता कौशल्या ने उनका नाम रखा राघव, बहुत मीठा नाम है। एक बात कहूं, राम जी का सबसे मीठा नाम है राघव, क्योंकि ये माने रखा। मेरे गोविंद का सबसे मीठा नाम है कन्हैया, क्योंकि यशोदा ने रखा, गर्गाचार्य ने कन्हैया नाम नहीं रखा था, और दशरथ वशिष्ठ जी ने राघव नाम नहीं रखा था। राघव नाम दिया माता कौशल्या ने और कन्हैया नाम दिया मां यशोदा ने। राघव बहुत प्यारा नाम है, तो रघुपति राघव। विश्वामित्र जी अब लेने के लिए आए और ताड़िका का जब कल्याण कर दिया राम जी ने, तो उन्होंने उनका नाम रखा राजा राम। विश्वामित्र प्यार से बोले राजा राम। और आज अहिल्या का कल्याण जब प्रभु ने किया तो विश्वामित्र जी ने ही उनका नाम ऋषभ कल्याण कर दिया राम जी ने, तो उन्होंने उनका नाम रखा राजा राम। विश्वामित्र प्यार से बोले राजा राम। और आज अहिल्या का कल्याण जब प्रभु ने किया तो विश्वामित्र जी ने ही उनका नाम ऋषियों के सामने रखा पतित पावन। अब एक मिनट बाद होने वाले हैं सीताराम, बोलो जय श्री कृष्ण। तो रघुपति राघव राजा राम अब हो गए, पतित पावन अब होंगे। इतना अद्भुत ना। तयो लोक कबीर समितौ धनुरय समुग्रम।

आदरणीय श्रोता, आज वैशाखको योगिनी एकादशी व्रत हो। शुभ प्रभात एवं नमस्कार। यो प्रभात कालिनी कार्यक्रम आराधनामा म प्रस्तोता युवेन्द्र। अब आजको यो कार्यक्रम आराधनालाई सदा चाहिँ अगाडि बढाउँदैछु हस्त दर्शन एवं भूमि वन्दनाबाट।